0: जयेंगे। ओम स्वस्ति अस्तु।
1: ओम स्वस्ति अस्तु। मैंने अब तक सरकार रोन को मुआ मकाय उल्लंग कर बादे ने
0: तनुनिंग
1: तनकला रागा ने जा उल्लंग आजा रागा
0: इंगे सब सीखी बु आदू इंगे Durus-durus, semeton selat segara. Wanang di tiang mulai satu menit. Dan ngeranjing niki gatur tiang. Semeton ring darat niki ngeranjing. Ini. Sane ring daratan. Jantos dumun. Aturan semeton selat segara ngeranjing. Ini.